0: रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।
1: जी गुरु करीब निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज, आप जी दे पावन स्थान दियां हाजरियां परदे गुरु कीयां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे होए बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप नाम जानी जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दी दात बख्शिश करनी सतगुरु जी कादर।

संग रागनी पांचों थापहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सीहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग को सक

मारू मस्त अंग में वारा प्रबल झंड कौ सख उभारा खाओ खट आओ पहरा नद गाए अष्टमाल कौ सख संग लाए पुन आयो हिंडोला पंचनार संग अष्ट सुत।

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औकान रा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल।

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गावहे पाचौ संग बरंगन लावहे सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावहे आसा गुनगुनी ऊंचा सुर सु

0: चक्रवर्ती चतर चक्र भगते स्वयं भव सुमन सर्वदा सब जुक्ते कपालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विरुदे
1: देख ते गुप्त अन सत वेद रंगे अपत नानक गोविंद सिंह श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार में तेरे दरबार सत कर्म से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबार।

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण भीन आद नाद गात सुधरम कर प्रवीण जंत्र मंत्र तद जाको आद मृग पार हस्त कीट विखे बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पद न ता जाको मंत्र मात न मित्र सब ठौर विखे रम्य हो जी चक्र चैन छेद न चित्र आदे उदार मूरत अगाध नाथ अनंत आद अंत न जाने अभिखा देव दुरांत देवियों ने जाने ही जय मरम वेद कतेव सन को संकेश चंदन पाव ही न सेव जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग रुग उपार नेत्र पुकारे शिव चक्र मुखचार सर्व सर्व तार के तर जापी जय जाप आद अगाध अनाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व डोर रहो विराज राज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दान ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के विखे विराज सुधर भी वह नाहे गुड़ गौर न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप राज भूमकाश अनूप जा जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात न देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सब तार के तर जानी जय ज्योत शेष नाम संस्पन्न नेत पूर्ण होत सो सुधटे सब सुर विरोध दानो करब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त के महाकव गड़त गाड़ अनंत हार हार कयो सबु मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेवक देव देवदानो मूड मानो जचन जाना जेव भूत भगवान नाथ नाथ अगन माय जले थले मंज सर्व ठौर निवास देगे न नेसने अबे नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंज सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हरता सर्व दयालु वेग चक्र चेन जबरन जागो जात भेग रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व नायक सर्व गायक सर्व दे अनभांग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आओ समी आद्य पाल दीन बंद पर भी श्री पर सर्व को करतार बरन जन चक्र जाको चक्र जन आकार जात पाद न गोत्र का था रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट कंजन सत्र भंजन परम प्रमाथ दुष्ट हरता सिट करता जगत में जगात भूत भव्य भविक भवान परमान देव गांज मित्र पर दयाल दयाल दीन दयाल मुकंद अगो डंडन दुष्ट खंडन काल के काल दुष्ट हरणंग पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाव सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व समृद्ध सर्व साधन सर्व के वेद विचार दुष्ट हरता विश्व हरता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद अखंड भूमिका जले थले मैं जब जाप अखंड सृष्ट चार विचार जते जानिए सब चार आद पासरी पर दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटि उपेंद्र जन्म ज्ञाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओ मुख चार कोटिंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण सर चक्र ते भुक चार आदात न मज्जा को भूत भगवान सत्व प्रतिज्ञा कलयुग चतुर काल प्रधान ध्यान ध्यान के महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबने पाइये तह पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्यान ध्यान के सब कर कोट कष्ट दुरांत गाय गाय थके गंधर्व नाच पिसरे पार सो सो थके मासुर पायो न पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा

कौन धर्म को क्रम है, को सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब का मरण है, कौन स्वर्ग का नरक, को सुगड़ा को मूर्ता, कहा तर्क अवतरक दोहरा, को निंदा जिस है कवन, कौन पाप का धर्म, कौन जो को भोग है।

कारक राजा कवन हरक सुख है कवन को रोगी रागी कवन को तत्व तन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कौन सिष्ट को विचार कौन सिष्ट को भ्रष्ट है को सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म कौन कर्म है कहाँ ब्रह्म को नाश कहाँ चेतन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी कवन कहाँ

अच्छे खंड तेज प्रचंड खंड उतंडे अलखमत जय जय होसी मैं कासर मर्दन राम कपरदन छात्र छिते आसरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन।

रामक प्रदन आदिते डावर डवंक पबर बवंक भुजा परंक तेज बरंग लगुड़िया फांदे आयुध बांधे सन मर्दन काल सुरंग अष्टाई चमक भूखण धमक अस झमक फोंक परंग जय जय हो सी मैं कासन मर्दन राम कपड़दन दै जिनांग चंडा सुर चंडन मंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामन दमकण जा फरंकण फणी फुकरण जोत जिते सरदार रखण दुष्ट प्रकर रखण पुष्ट प्रहर रखण दुष्ट मते जय जय उसी मैं कासन मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अर्धे दामन प्रासन सुछब निवासन सृष्ट प्रकाशन कूड गते रक्ता सुराचन जुद प्रमाचन हृदय नराचन धर्म प्रते सुनत अचिंती अनर विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय उसी मैं कासन मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण सुध मते फणी अर्पुण कारण बाग बकारण शास्त्र प्राण साध मते सहति स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलांग जय जय उसी मैं कासन बंदन भूम आकाश पताल जिलांग चाचर चमकारन छिछुर हारन धुम दुखारन द्रुप मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज पते जन अष्ट भुजे जय जय उसी मैं कासन बंदन भरम विनाशन धन मुदजे घुंगरू घमकण शास्त्र जमकण फणियर भूंकारण धन मुदजे अष्टाड प्रासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसी प्रवाह शुद्ध स्नाहे अगम अथा एक वृते जय जय उसी मैं कासन मर्दन आद कुमार अगाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावर कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे केंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण मितर तले जय जय उसी सब ठौर निवासन बाए पताल।

सुता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होती छत्र करखण आद अनिल अगाध भे चंचला चखांगी अलग पुजांगी तंतुरा।

चाची प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस अरोधन क्रूर पिते दुमराज विदूषण प्रलय प्रजूषण जग विदूषण मुसुद मते जल पजयंती सतर मथंती दुष्ट प्रधान गाड मते जय जय उसी मैं कासर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खतरियान खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाद मत गते बिरला जी बिंडन चछुर्दन।

दामने प्रकाशे उन्तन नासे जल प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकार कण सर्वर रखण पर दुष्ट प्रदा कण पितर तले अष्टायुध बाण बोल बाण संत प्राण गुड़गते जय जय उसी में का सरमर्दन आज अनाद अगाध बते दुख दुख प्रभाचण सेवक रक्षण संत प्रदक्षण सुतरे सारंग सहाय दुष्ट प्रदाय अर्धर गाय।

ऊंच नीच कीनो बनाओ, सब वार पार जागो प्रभाओ, सब जीव जन जानत जाहे, मन मूड़ क्यों ना सेवंत ताहे, कई मूड़ पूड़ पत्रा पत्र पूजा करंत, कई सिद्ध साध सूरज सिवंत, कई पलट सूरज सीधा कराए, प्रभु एक रूप द्वय कै लखाए, अणछी तेज अनवय प्रकाश, दाता द्वंद द्वय अनाश, सब रोग शोक ते रत रूप, अनवय काल अच्छा स्वरूप, करुणानिधान कामल कृपाल, दुख दोकर हरत दाता दयाल, अंजन भीन अनभंजनाद, जल तल प्रभाव सर बद्रसाद, ये जात पात ने भेद भ्राम, ये रंग रूप ने एक धराम, ये सत्र मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप अभि अभिचल पार, जाने न जाय रूप रेख, कह बास तास कह कौन भेग, कह नाम तास है कवन जात, ये सत्र मित्र ने पुत्र भ्राद, करुणानिधान करण स्वरूप, ये चक्र चैन रंग रूप, ये खेत भेद ने कर्म काल, सब जीव जंत की करत पाल, उद्धंग विराट सिद्धंग स्वरूप, बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप, ये रूप रेख ने रंग राग, अनछी ते जान भिजदा दाग, जल तल महीप पंतन दुरंत, ये नेत नेत निसिन चरंत, पायो जाय जे पैर पार, दिनान दुख दहता।

पच पशु नग नाग नाधप सर्व सम सबको प्रत पारा भूगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारा दीन दयाल दयानित दुख न देखत है पर दे तनहारा दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मदल डारा खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत समारा पारन पास के पद मा पद भेद कते अभेद उचारा रोजी राज बुलोक राज करुख रुहान की रोजी नटारा कीट पतंग कुरंग भुजंग मूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहं मेव न भेव लख्यो ब्रह्म सिंह भरमाए वेद पुराण कते कुरान हसे थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद मापत पाए अद अनंत अगाध अद्वैक सुभूत भविक भवान अभय अंत विहीन अनात्म आप अदाग अदोग अछिद्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ वह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन सने सबोतन ने विरक्त अगे जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम रिस

200 सौ पेट ही के पट पीछ बचावा जज बुजंग सुदानव देव भेद तुम्हें सभी कर दावा। उमे का अस्पताल छात्र जज बुजंग सब सरनावा पास।

देव देवतान को सुरेश दान भान को महेश गंग धान को अभेश कहीं अत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहूं पे न दीन सात अधीन कहीं अत है पाइये न पार तेज पुंज में पार सर्व विद्या के उदार है।

पार निराधार है न परवार पाइये न पार पे पार के बखानिया अदव अपनासी परम पूर्ण प्रकाशी मां रूपों के राशि अनासिका के मानिया जंत रहू न जा जकी बापू न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनमानिया तेज को तंत्र के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कहके जानिया तेज को तर है के राशि को सर है के सुरता को घर है के सीता की सार है कामना की खाने के साधन की सार है वृक्षता की बाण है के शुद्ध बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को रूह को रूप है कुमत को प्रकार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को प्रहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के स्कृत को अभूत के अच्छे विनाशी है काम को कुरिंदा है के खुबी को दिहंदा है गनीमन करिंदा के है के तेज को प्रकाशी है काल हो के काल है के शरण के साल है के मित्रन को पोकत है के बुद्धता की बासी है जोगों को यंत्र है के तेज को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सीता को वास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है के निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के सुरता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जब जारत को कटैया है कि कामना को करे है तेज को प्रचंड है अखंड को खंड है महिपुर को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरण है के अवता को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये ने पार परावार हो को पार जागो खींचत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल भी जावे पूरी भी न पार पावे आशा ते अनाश है देवर को देव महादेव को देव है निरंजन अभेव नाथ तत्व विनाशी है अंजन बीन है निरंजन पर बीन है के सेवक अधीन है कटिया जम जाल के देवर के देव महादेव के देवनाथ घूम के भुजे है माँ बाल के राजन के राजा माँ साजों के साजा माँ जोगों को जोगे तरिया।

अंबर जमीन जह जपत जाप, सातो आकाश सातो पतार, बितरियो दृष्ट जह कर्म जार, सातो आकाश सातो पतार, बितरियो अदृष्ट जय कर्म जार, उस्तत

चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावह सब ध्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्याव

से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी

बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो।

आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास नवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज जूं करियह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा पपधरा काल पाए शिवजू अवतरा।

थियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

आप सवारी सेव कण को सेव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब

बैठा, काहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे इस दुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत, स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे, बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई, सम सतरै।

विस्मात्ताद् विस्मात् वेद विस्मात् जीव विस्मात् पे विस्मात् रूप विस्मात् रंग विस्मात् दाग फ्रजन विस्मात् पौन विस्मात् पानी विस्मात् अग्नि खड़े वड़ा विस्मात् धरती विस्मात् प्राणी विस्मात् साजग प्राणी विस्मात् संयोग विस्मात् वियोग विस्मात् भोग विस्मात् भोग विस्मात् सत्य विस्मात्।

हंच आया हंच गया हंच में हंच में हंसता हंच लाया हंच कटा हंच गया हंस चार पुणा हंच पाप नुचा हंस नरक से पड़ता हंस से हंच रोए हंच परिये हंच तवे हंच जाते जिंसी तवे हंच मूर्ख हंच सियाना मत मत की सार मजाना हंच माया हंच छाया हमें करकर जंत पाया।

पहला सच्चा भय सच्चा बैठाए सच्चा घर प्यार कोई ना पिटियो जाए सच्चा के जो अलग अपन सर कहती जाए सच्चा किसी को लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता पंजवा पाया कीर्ति ता हुआ पाक पवित्र पापी से तन कड़िया।